यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
1: श्री रामचंद्र
0: चरणौ
1: वचसा गृणामि
0: श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि
1: श्री रामचंद्र
0: चरणौ शरणं प्रपद्ये
1: श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये
0: माता रामो मत्पिता।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केल वेणुधुनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: कोशिश का महत्व. कहा जाता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. जी हाँ, इतिहास इसका साक्षी है. हर सफलता के पीछे एक छोटी सी कोशिश जरूर होती है. खुले आसमां में उड़ने वाली चिड़िया को देख राइट्स बंधुओं ने उड़ने की कोशिश की, अर्थात हवाई जहाज बनाने की कोशिशों ने ही सारी दुनिया को हवा में उड़ने का आनंद जो दिया है. हम जो आजादी से सांस ले रहे हैं, उसके पीछे भी स्वतंत्रता संग्राम में करोड़ों देश प्रेमियों की कोशिशें ही तो थी. थॉमस अल्वा एडिसन की 999 कोशिशों ने रात को दिन में बदलने वाले चमत्कारी बल्ब का आविष्कार किया है. सच तो कोशिश आज की आधुनिक दुनिया में सफलता का राज है. ये प्रगति का पहला पाठ है. कोशिश ही विकास की नींव, उन्नति की पहली सीढ़ी तथा मंजिल पाने की सही राह भी है. कोशिश की महिमा ही अपरम अपार है. सच तो ये छोटा सा शब्द, लेकिन ये एक शक्तिशाली बीज की तरह है, जिसमें है अथाह बल और शक्ति, जो नन्हे से बीज को विशाल वटवृक्ष में बदलने की क्षमता रखती है. कोशिश अर्थात कार्य, मकसद, उद्देश्य, लक्ष्य को पाने के लिए किया गया छोटा सा प्रयत्न. किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास या फिर प्राप्ति, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उससे पाने के लिए किया गया प्रयत्न ही कोशिश है. लगातार किया गया छोटे से छोटा प्रयास ही किसी काम में सफलता दिलाता है. परंतु घोर प्रयत्न करने के बाद भी यश न मिले तो निराश न बने. सदा याद रखे, प्रयत्न यानी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती. इसलिए तो कहा जाता है प्रयत्नांति परमेश्वर, अर्थात कोशिश करने पर ही परमात्मा भी मिलते हैं. कोशिशों से किया गया निरंतर अभ्यास साधारण व्यक्ति को महान कलाकार बना देता है. अतः कहा भी जाता है, करत करत अभ्यास जड़मति भये सुजान. अतः हर कीमत पर कोशिश करते रहिए और अपयश को यश और असंभव को संभव में बदल डालिए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: वेणुधोनी 90.4 FM KLE गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: असल पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
4: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जन भागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
5: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में GD करनालोड पर खाटू श्याम तिल्ली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवम मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेवा संकल्प

0: अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
1: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
2: सारण और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
1: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
3: हाल राजकोट एमएसएमई उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
1: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्जवल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। 1.25 लाख दीयों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द हैं। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसु।
8: बेळगाव मधील केली बीएम कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटल आरोग्य क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट सेवा देत आहे. तुमच्या रोगाचे योग्य निदान करून आवश्यक असणारे सर्व उपचार तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून दिले जातील. केली बीएम कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटलचा मुख्य उद्देश रोगाचे निदान करणं आणि योग्य उपचार करणं. तुमच्या आरोग्याची काळजी घेणं हेच आमचे ध्येय. तुमच्या आरोग्याच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी आयुर्वेदिक उपचार घेण्यासाठी संपर्क करा केली बीएम कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटल आणि महाविद्यालय शहापूर बेळगाव. फोन नंबर 08312486286.

माँ बनने में हो रही है देर, इंतजार है खुशखबरी का। देयर इज वन नेम यू कैन ट्रस्ट, केली फर्टिलिटी सेंटर विद साइंस, सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत केली IVF के साथ। आज ही विजिट करें केली फर्टिलिटी सेंटर, OPD नंबर 97, शरावती सेकेंड फ्लोर, केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड MRC बेगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 247377, एक्सटेंशन 1530।

कभी कभी माँ बनने का सफर होता है थोड़ा लंबा, बट यू आर नॉट अलोन। केली फर्टिलिटी सेंटर इज विथ यू विथ साइंस, सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत केली IVF के साथ। केली फर्टिलिटी सेंटर, OPD नंबर 97, शरावती सेकेंड फ्लोर, केलीज डॉक्टर प्रभाकर पोरे हॉस्पिटल एंड MRC बेलगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 247377 एक्सटेंशन 1530। For the first time in Hubballi, a golden opportunity for new entrepreneurs, young entrepreneurs, startup founders and aspiring self-employed individuals. Turn your ideas into income and build a strong foundation for your dream business by attending this one-day skill development workshop, Empower 365, from idea to company, on Sunday, 18th of October 2026. This workshop will help you transform your business ideas into successful ventures, develop essential entrepreneurial and business skills, learn practical strategies for starting and growing a profitable business, gain insights and inspiration from experienced entrepreneurs. Take the first step towards becoming a successful and profitable entrepreneur. Register today. Contact 95135-19666. Geekona Success Strategy.

0: नमस्कार।
1: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
0: ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಹೊರ ಹಾಗೂ ಒಳರೋಗಿ ವಿಭಾಗ ಅನುಭವಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ.
1: ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
0: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
1: ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಹಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0831-24-86-286.
2: वेणुधोनी 90.4 FM KLE गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
3: Semicon India 2026 in New Delhi says India's semiconductor ecosystem expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Union Minister Ashwini Vaishnav says government has set a target to support 200 startups and companies to design chips in India across spectrum of semiconductor requirements. BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan begins today to mark Prime Minister Narendra Modi's 25 years of public life and service. PM Vishwakarma scheme completes 3 years today. India slams Pakistan for providing permissive environment for terrorists responsible for September 11 attacks in the United States. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in last match of T20 International Series in New Delhi this evening. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi. The three-day conference is focusing on advancing collaboration, investment, innovation and talent development in India. Speaking on the occasion, the Prime Minister said India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and it is opening new opportunities for innovation, investment and growth.
4: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
3: Mr. Modi said, on one side, India's economy is growing and on the other side, global trust in India is also growing. He said, despite the challenging global environment, India recorded a growth rate of 7.8%. The Prime Minister said, at the same time, Japan's credit rating agency also upgraded India's sovereign rating. Mr. Modi said, every citizen of the country is working with a commitment to build a developed India.
4: इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
3: On the occasion, Union Minister of Electronics and IT Ashwini Vaishnav said the foundation has now been laid and the next step is to build the industry through Semicon 2.0, which focuses on 6 major pillars. These include semiconductor design, machines and materials, memory, silicon, compound and logic fabrication units, and research and development. He said the government has set a target to support at least 200 startups and companies to design chips in India across the spectrum of semiconductor.

एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आप जानते हैं मैंने आपको कितना मिस किया? शायद नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना आप हमें मिस करते हैं भैया, उतना ही हम आपको भी मिस करते हैं। और हर शाम की तरह आज भी हम लौट आए हैं आप सभी का एंटरटेनमेंट करने और साथ ही आपको कई नई सारी जानकारियां देने। और आप सुन रहे हैं वेलकम का सबसे बड़ा और सबसे पहला रेडियो स्टेशन, जो है वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनासू। और मैं हूं आप सभी का प्यारा सा दुलारा सा रेडियो दोस्त और होस्ट आरजे आयुष। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही काम होने वाला है, जिसकी हम लोगों को शायद लाइफ में जरूरत भी है, क्योंकि आजकल जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर लोगों को खुद को देने के लिए भी वक्त नहीं है। इसलिए हम आज बात करेंगे एक ऐसी प्रोसेस पर जो आपको शांत बनाती है, काम बनाती है, कि आप गेस कर सकते हैं। तो टॉपिक जानने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, तो आप वेट करिए और सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनासू पर।

हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो बी रिलैक्स, जहां आप हो जाएंगे एकदम रिलैक्स एंड स्ट्रेस फ्री। और आप सुन रहे हैं ध्वनि ध्वनि यानी वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु विथ RJ आयुष। चलिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हुए मैं आपको बताता हूँ आज का टॉपिक किस बारे में होने वाला है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही स्थिरता और कामनेस पर है, जिससे आपकी इंटरनल पावर जनरेट होती है, आपका मन एकदम शांत हो जाता है। जी हाँ, उस प्रोसेस का नाम है द पावर ऑफ मेडिटेशन, द जर्नी विद इन। क्या आप भी मेडिटेशन करते हैं? शायद हाँ या शायद ना। काफी लोग करते भी हैं और काफी लोग नहीं भी करते हैं। चलिए आज बताएंगे आपको कुछ बेनिफिट्स इसी के बारे में, क्योंकि मेडिटेशन आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ, हमारे शो बी रिलैक्स में। तो आपको क्या करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको एकदम रेडियो की वॉल्यूम कर लेनी है फुल और सुनते रहना है वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु विद RJ आयुष।

दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर बेलगम के सबसे बड़े और पहले रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू में, और मैं आरजे आयुष आपके साथ बना हुआ हूँ, जहाँ हम आज बात कर रहे हैं द पावर ऑफ मेडिटेशन द जर्नी विद इन। दोस्तों मेडिटेशन हमारी जिंदगी में वो बैलेंस बनाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। इन अवर फास्ट पेस्ड वर्ल्ड फाइंडिंग मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस कैन बी अ चैलेंज, जहाँ मेडिटेशन हमें उस कियोस से उस नॉइज से बचा लेता है। इट इज अ स्पेस वेयर वी कैन रिकनेक्ट विद आवरसेल्व्स एंड एक्सपीरियंस इनर पीस। मेडिटेशन एक तरीके की माइंड फीलिंग एक्टिविटी है, जिसका मतलब यू कैन से द एक्ट ऑफ बीइंग फुल्ली प्रेजेंट इन द मोमेंट। बाय कल्टिवेटिंग दिस अवेयरनेस वी कैन ऑब्जर्व अवर थॉट्स अवर फीलिंग्स एंड सेंसेशन विदाउट एनी जजमेंट्स। और मैं प्ले करने वाला हूँ अब आपके लिए कुछ धमाकेदार जबरदस्त दिल को छू जाने वाले गाने, तो सुनते रहिए और जानेंगे इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा और आफ्टर अ शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक। सुनते रहिए मेरे साथ वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

Hello and welcome back, ladies and gentlemen, to your favorite show, Be Relaxed, and I'm your host, RJ Ayush, with you, and aap sun rahe hain Dhwani Dhwani, Venu Dhwani, 90.4 KLE Kanasu. Dosto, maine bhi meditation ki us transformative power ko bahut paas se observe kiya hai, jo ye ek shant sa environment create kar deta hai mere mind mein, jisse body, heart, soul ekdam calm ho jati hai. Shayad aapke saath bhi aisa hota hoga, aur aisa nahi hai ki koi specific time hai jisme aapko meditate karna hai ya koi स्पेसिफिक जगह है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सम पीपल यूज दैट स्लो म्यूजिक ऑल्सो टू मेडिटेट. इट्स जस्ट अबाउट यू एंड योर थॉट. इट इज अ जर्नी ऑफ योर सोल. तो आप कहीं भी कभी भी मेडिटेट कर सकते हैं. दोस्तों, मेडिटेशन की कई सारी टेक्निक्स होती है. अलग अलग लोग अपनी बॉडी के हिसाब से, अलग अलग कम्फर्ट जोन के हिसाब से उस टेक्निक्स को अपनाते हैं. तो चलिए बात करेंगे उन्हीं टेक्निक्स के बारे में. बात आफ्टर सम सुपर हिट सॉन्ग्स. तो आपको कहीं नहीं जाना है और सुनते रहना है वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु.

दोस्तों, वैसे तो मेडिटेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है और हर टेक्निक का एक यूनिक वे है जिससे आप अपने अंतर मन से जुड़ सकते हैं। लेट्स डाइव इनटू सम पॉपुलर टेक्निक और मेथड्स व्हिच कैन हेल्प अस नेविगेट द सी ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। पहली, ब्रेथ अवेयरनेस। दोस्तों, इस टेक्निक में आपको अपनी ब्रेथ यानी सांसों पर फोकस करना होता है। एज यू एंगेज एंड एक्सहेल, लेट योर ब्रीथ टू बी द एंकर दैट कीप्स यू रोटेटेड इन द प्रेजेंट मोमेंट। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में क्या होता है, इट्स अ टेक्निक जहां आपको फुल्ली प्रेजेंट रहना पड़ता है उस मोमेंट में जहां आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, इमोशंस और सेंसेशंस को ऑब्जर्व करते हैं बिना उनको जज किए हुए। चलिए जानेंगे कुछ और टेक्निक्स के बारे में, बट आफ्टर सम सुपर हिट सॉन्ग्स, तो कहीं जाइएगा मत और सुनते रहिए हमारे साथ हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनेक्ट सुपर।

0: डॉक्टर प्रभाकर कोरे चैरिटेबल हॉस्पिटल नेहरू नगर बेलगाम 24 आवर्स ऑफ फ्री सर्विसेज फॉर ओपीडी एंड आईपीडी पेशेंट्स फ्री ईसीजी फ्री एक्सरे फ्री सोनोग्राफी एंड फ्री लैब सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द नीडी पेशेंट्स जनरल ऑपरेशंस कैटरेक्ट एंड सी सेक्शंस आर डन फ्री ऑफ कॉस्ट मोर देन 70 लैक्स ऑफ ओपीडी पेशेंट्स एंड 6 लैक्स ऑफ आईपीडी पेशेंट्स हैव बीन बेनिफिटेड बाय केएलई'स डॉक्टर प्रभाकर कोरे चैरिटेबल हॉस्पिटल अराउंड 3 लैक्स ऑफ फ्री सर्जरीज 85,000 प्लस फ्री डिलीवरीज 45,000 plus free cataract operations have been conducted. To avail the free services and treatments, please contact 99726-91578 and 77954-35314.
1: आरोग्य क्षेत्रात आपले भविष्य घडवू इच्छिणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एक सुवर्ण संधी

हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आप सभी के फेवरेट शो बी रिलैक्स में। और आज हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ मेडिटेशन की, जो कि एक जर्नी है विद इन। दोस्तों कुछ और टेक्निक्स जैसे मूवमेंट मेडिटेशन, तो इस टेक्निक में यू कैन प्ले अ सॉफ्ट सॉन्ग जिसकी वाइब्रेशन पर आप धीरे धीरे मूव करते हैं और उस सॉन्ग में घुल जाते हैं, उस थॉट प्रोसेस में घुल जाते हैं। ये भी एक तरीके की टेक्निक है मेडिटेट करने की। बॉडी स्कैन मेडिटेशन, इट इन्वॉल्व्स अ डीप कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर बॉडी, जिसमें आपका अटेंशन सिस्टमेटिकली इन्वॉल्व रहता है इन यू एंड यू फोकस ऑन योर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जिससे आपको एक सेल्फ रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है। तो दोस्तों ये कई मेजर टेक्निक्स मैंने आपको बताई, अब आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी टेक्निक यूज करते हैं। और अगर आप मेडिटेट नहीं करते हैं तो ट्राई कीजिए थोड़ा सा मेडिटेट करने के लिए, ये आपको रियल लाइफ में आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा फोकस करने में, आपका करियर चूज करने में, या जो भी काम आप कर रहे हैं। मेरी बात मानिए, ट्राई करके देखिए। और उसी के साथ सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनासू।

हेलो वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं बेलगम का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन रेणु ध्वनि 90.4 एफएम केएलई कनसू विद योर लव्ड आयुष, यानी कि आरजे आयुष। दोस्तों आपको पता है मेडिटेशन की खासियत क्या है? इसकी खूबसूरती है इसकी एक्सेसिबिलिटी, जिसका मतलब आपको मेडिटेट करने के लिए कोई माउंटेन टॉप्स या आश्रम्स में जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी किसी भी वक्त, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप कहीं भी किसी चेयर पर शांत बैठे हैं तो तभी भी आप मेडिटेट कर सकते हैं। आपको कोई भी आश्रम, किसी भी एनवायरमेंट, गार्डन, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, आप कहीं भी मेडिटेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप मेडिटेशन को अपने स्केड्यूल में फिट कर लेंगे, आप खुद की बॉडी और थॉट प्रोसेस में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखेंगे, अपने रूटीन्स को ऑब्जर्व करेंगे, फिर चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग कॉफी, साथ ही आपको कई मेंटल प्रॉब्लम्स जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होते हुए नजर आने लगेगी। अब दोस्तों देखिए, हाउ अ बाइक नीड्स अ सर्विसिंग, अगर एक गाड़ी है तो उसकी सर्विसिंग हमें करना ही पड़ेगी ना टू कीप वॉकिंग प्रॉपर्ली, वैसे ही आवर बॉडी needs that servicing of meditation, of being calm in that moment. So give that extra thing to it. वो repair हो जाएगी और आप आपके काम में ज़्यादा अच्छे से मन लगा पाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी सर्विस मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आपको सुनाऊंगा कुछ जबरदस्त गाने। तो सुनते रहिए ध्वनि ध्वनि वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर।

हेलो एंड नमस्कार, बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू विथ योर लवली RJ आयुष। तो दोस्तों, आज के इस डीप एपिसोड में हमने कई ऐसी मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में जाना जिससे हम और हमारी बॉडी को कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। गाइस, आई स्ट्रांगली इनकरेज यू टू एक्सप्लोर मेडिटेशन फॉर योरसेल्फ। ये एक जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी के लिए, अपने आप को समझने के लिए, जिससे आप अपने पोटेंशियल को जान सकते हैं कि भैया मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है काम करने का। द वर्ल्ड में बी बसलिंग अराउंड यू, बट विद इन योर लाइज सेंचुरी ऑफ कामनेस। प्रैक्टिस मेडिटेशन, मैं वापस ले रहा हूं, प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड सी हाउ इट ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड फ्रॉम इनसाइड आउट। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड के साथ। दिस इज योर होस्ट RJ आयुष साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखे, अपने परिवार को टाइम दे, हंसते रहिए और इंजॉय कीजिए आज आप अपनी इवनिंग। जल्दी मिलेंगे वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु। यादों की बारात का हमारा फेवरेट शो लेके आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त हम सफर आरजे स्वरा। दोस्तों आज का बहुत ही स्पेशल शो है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, यादों की बारात के साथ आज मेरा 100वां एपिसोड है। 100 एपिसोड आज के शो के साथ पूरे हो जाएंगे मेरे, और अगले बार से हम एक नए शतक में पदार्पण करेंगे। ये 100 एपिसोड्स की जर्नी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रही है, तो आज का शो भी मेरे लिए उतना ही स्पेशल है। तो शुरू करते हैं आज का शो। सबसे पहले हम यादों की बारात को, इस मोड़ को सेलिब्रेट करते हैं। यादों की बारात ये एक ऐसा शो है, यह एक ऐसा मोड है जहाँ पे हम अलग अलग थीम्स पे, अलग अलग फीलिंग्स पे, अलग अलग आवाजों में गाने सुनते हैं। मैं आपको इस शो में कुछ ऐसे सदाबहार नगमे सुनाती हूँ जो आप रोज तो नहीं सुनते, पर जब भी सुनते हैं गुनगुनाए बिना रह नहीं पाते। इन गानों के साथ हम हमारा बचपन, जवानी, प्यार, इकरार, गुस्सा, लव लेटर्स और बहुत सारी चीजें याद करते हैं। ये यादों की बारात का शो हमारे घर के नजदीक के उस नुक्कड़ जैसा है जहाँ से गुजरते हुए कई सारी यादें ताजा हो जाती है। तो इस मोड़ को, इस यादों की बारात को, इस नुक्कड़ को हम आज सेलिब्रेट करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का शो। मैं आपको सुनाती हूँ आज का पहला गाना। कुछ इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। यादों की बारात हम जब भी सुनते हैं तब अलग अलग फीलिंग्स को और यादों को महसूस करते हैं। आंधी फिल्म का ये गाना है जो 1975 में रिलीज हुई थी। सुचित्रा सेन और संजीव कुमार के ऊपर फिल्माया गया ये बेहद खूबसूरत सा गाना गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। इस गाने को म्यूजिक दिया है आर डी बर्मन ने और लिखा है गुलजार साहब ने।

यादों की बारात का हमारा आज का 100वां एपिसोड सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा है आप और मैं और वो खूबसूरत यादें जो हमने यादों की बारात के सफर के दौरान जोड़ी हुई है। मेरी यादें तो मैं याद कर रही हूँ, पर आपकी यादें कौन सी है मुझे नहीं पता। आप उन यादों को मेरे साथ बांट सकते हैं। आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9019904904। आगे बढ़ते हैं, और आज जो खुशी हो रही है आपको और मुझे, उसे बयां करता हुआ एक खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आज से पहले, आज से ज्यादा, चितचोर फिल्म का ये गाना है जो 1976 में रिलीज हुई थी। अमोल पालेकर और जरीना वहाब के ऊपर फिल्माया गया ये खूबसूरत सा गाना है।

जिसे म्यूजिक दिया है रविंद्र जैन ने और गाया है येशुदास ने। भले फिल्म में सिचुएशन कुछ अलग थी, फिल्म में जगह कुछ अलग थी और लोग भी कुछ अलग थे, वो खुशी भी वही है जो हम आज के शो पे महसूस कर रहे हैं। तो इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और ये खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

0: पहले।
1: दोस्तों, कहा जाता है कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है, कुछ हासिल करने के लिए शुरुआत करनी जरूरी है। और इस यादों की बारात की जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं बेहद डरी हुई थी, नर्वस थी। मुझे नहीं पता था कि ये शो आगे कैसे बढ़ेगा, लोग इसे सराहेंगे या नहीं, लोगों को पसंद आएगा या नहीं। और जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स मुझ तक पहुँचता गया वैसे वैसे मेरी हिम्मत बढ़ती गई। खुशी तो हम सेलिब्रेट कर चुके हैं, पर अब समय है अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने का, थैंक यू बोलने का। सबसे पहले तो मैं थैंक यू उस ऊपर वाले का करना चाहती हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये शो कर सकूँ। मैं शुक्रिया करूँ तेरा तो कहाँ तक करूँ, मैंने सर झुकाया कम है, मैंने ख्वाहिश

हिशे मांगी कम है, तुमने हमेशा ही दिया ज्यादा है। दोस्तों, हमारे पास जो भी है, जितना भी है, उसमें खुशी महसूस करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए कृतज्ञ होना यानी उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखना, एक थैंक यू बोलना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले भगवान को याद करते हैं, वैसे ही किसी सफल काम के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करना भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ अगला गाना सुनाती हूँ, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारे है दोस्तों। गाबान फिल्म का ये गाना है जिसे गाया है रफी साहब ने। 1966 की फिल्म है। इस गाने को लिखा है हसरत जयपुरी ने और म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने। इसी के साथ और कुछ प्यारे प्यारे गानों के साथ मैं लौटूंगी। तब तक के लिए आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनासूर।

दोस्तों, यादों की बारात का हमारा खूबसूरत सा सफर चल रहा है और इस सफर का ये 100वां एपिसोड है। वेणु ध्वनि के सफर के लिए शुक्रिया अदा मैं कर रही हूँ सभी का, और शुरुआत मैंने ऊपर वाले से की है। दोस्तों, मौका देने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर उस मौके का फायदा उठाना कैसे है वो सिखाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। पर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने मुझे सिखाया कि काम कैसे करना है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, गाने कैसे चुनने हैं, और उन सभी को मैं आज एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मेरे वेणु ध्वनि के सारे स्टाफ को, मेरे कॉलीग्स को, और उन लोगों को जिन्होंने मुझे यहाँ पे काम करना सिखाया। मनीषा मैडम, सुनीता मैडम, भरत सर, मंजुनाथ सर, श्रीधर, संतोष, वीरेश सर और सुनील सर, और इन सभी के साथ साथ हमारे प्रकाश अन्ना, इन सभी को अ वेरी बिग थैंक यू। और इसी के साथ ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक मुसाफिर एक हसीना का ये गाना है जिसे गाया है रफी साहब और आशा भोसले ने। म्यूजिक

यादों की बारात के खूबसूरत से सफर में आज हम 100 एपिसोड्स पूरे होने की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्टाफ को और कॉलीग्स को भी थैंक यू बोल दिया, भगवान को भी थैंक यू बोल दिया, पर अब उनका शुक्रिया अदा करना है जिनके बिना ये शो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। दोस्तों, अगर घर पे हमारी माँ खाना बनाती है तो खाना खाने के लिए हम होते हैं ना। हम अगर खाना नहीं खाएंगे तो वो खाना बनाएगी ही क्यों। उसी तरह खुशियाँ बांटने के लिए आपके पास कोई अगर ना हो तो आपको खुशी वो महसूस ही नहीं होती। और उसी तरह शो सुनने के लिए अगर लिसनर्स ना हो तो शो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। 100 शोज पूरे करने के लिए मुझे हिम्मत और मोटिवेशन आप सभी से मिला है। इतने प्यार से जो आप हमारा रेडियो स्टेशन सुनते हैं, आपके कमेंट्स हम तक पहुंचते हैं, आप हम पे फोन पे बातें करते हैं और हमें बताते हैं कि आपको किस किस्म के गाने सुनने हैं, किस किस्म के शोज सुनने हैं, और हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है। भले ही हम रोज रूबरू ना मिलते हों, पर रेडियो के जरिए हम आपके दिल तक तो हर रोज पहुंचते हैं और आपकी भी दिल की बातें हम तक हर रोज पहुंचती है। भले ही आप हमें कॉल करिए या ना करिए, मैसेज करिए या ना करिए, पर सच कहूं आपके कॉल्स और मैसेजेस का हमें बहुत इंतजार रहता है और बहुत खुशी मिलती है जब आप हम तक आपके मन की बात पहुंचाते हैं। इसी के साथ आपको आज का शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9019904904 और ये अगला गाना आप सभी के लिए। आराम फिल्म का ये गाना है जो 1951 में रिलीज हुई थी, शुक्रिया शुक्रिया। म्यूजिक दिया है अनिल बिस्वास ने और इस फिल्म में काम किया है देवानंद और मधुबाला जी ने। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा थैंक यू एक्सेप्ट कीजिए। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE।

दोस्तों, यादों की बारात का खूबसूरत सा सफर चल रहा है और हम आज हमारा 100वां एपिसोड सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए इस शो में मैं हिंदी फिल्मों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिसने इतने खूबसूरत, इतने मधुर और इतने रिच गाने दिए हमको, सोने से भी ज्यादा कीमती, इतने खूबसूरत और इतने रिच गाने दिए हमको। इस इंडस्ट्री ने जैसे लोगों को रोजगार दिया, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट दिया, वैसे ही ये खूबसूरत गाने हमें जिंदगी भर के लिए दिए हुए हैं। इन गानों के बिना यादों की बारात का शो उतना ही अधूरा है जितना चांद के बिना आसमान। इसीलिए अ वेरी बिग थैंक यू टू द होल बॉलीवुड इंडस्ट्री और उनके सभी आर्टिस्ट, सभी कलाकारों को। गाना है आग और दाग फिल्म से तेरे प्यार का शुक्रिया, म्यूजिक दिया है दत्ता नाइक ने, गाया है आशा भोसले ने और मोहम्मद रफी साहब ने। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और लौट के आइए 90.4 FM KLE का।

दोस्तों, यादों की बारात का खूबसूरत सा हमारा 100वां एपिसोड चल रहा है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के गाने थे, हमारे वेणुध्वनि का स्टाफ था, आप जिसे प्यारे प्यारे लिसनर्स थे और भगवान का आशीर्वाद था, इसीलिए ये शो इतना आगे बढ़ सका। पर और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये शो मैं इतने मन के साथ कर पाती हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं मेरे लाइफ में जिन्होंने बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट इन गानों की तरफ जगाया, मुझे इन गानों से इंट्रोड्यूस कराया। उन सभी को थैंक यू कहते हुए ये खूबसूरत सा गाना मैं प्ले करना चाहती हूँ। आपका खत मिला, आपका शुक्रिया। शारदा फिल्म का गाना है जो 1981 में रिलीज हुई थी, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। इस फिल्म में रामेश्वरी, जितेंद्र, कल्पना अय्यर और जगदीप ने काम किया था। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और सुनते रहिए वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

0: शुक्रिया।
1: दोस्तों, यादों की बारात का 100वां एपिसोड हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसू और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। दोस्तों, अब समय हो चुका है आज के शो का आखिरी गाना सुनाने का। सच कहूँ, ये शो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर एक शो के लिए मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, बहुत दिल से ये शो बनाती हूँ। इस शो को करने के दौरान कई ऐसे गाने मैंने सुने जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। बॉलीवुड के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग बातें मुझे जानने को मिली और सबसे अहम बात, कुछ ऐसा म्यूजिक मैंने सुना कि मुझे पता चल गया कि क्यों लोग इन पुराने गानों के इतने दीवाने होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये जानकर कि मैंने आज 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। शुरू जब किया था ये शो तब कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, डर लगता था, मैं बहुत नर्वस थी कि क्या मैं ये शो अच्छे से कर पाऊंगी, पर आप सभी के साथ के कारण ये शो आज यहाँ तक पहुँचा है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और मेरा एक फेवरेट गाना मैं आखिर में सुनाना चाहती हूँ। गाने के बोल है बड़े अच्छे लगते हैं। बालिका वधु इस फिल्म का ये गाना है जो 1976 में रिलीज हुई थी। सचिन और रजनी शर्मा ने इस फिल्म में काम किया था। इस गाने को म्यूजिक दिया है आरडी बर्मन ने और आवाज दी है अमित कुमार ने। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और सुनते रहिए वेणुध्वनि 90.4 FM KLE करसू।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: यादों की

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन।

अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धूनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।